कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब रसूम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमी हमेशा

के लिए दूर करने के लिए। ये लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, कई दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-2560-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2260-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

0: नाम है।
1: और रेडियो SBS के जरिए पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रवीन। आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गुरमीत और मीना की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना। एल्बम का नाम है भक्ति ज्ञान, उसी एल्बम में से निकाल कर ये सुंदर और अति सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। चेतना शुक्ला की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में बस पीस के गए। कुमार विशु की आवाज में अभी आपने सुना, चले अब की बार विक्रम हसरा की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है विक्रम हसरा की आवाज में।

सुंदर भजन हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में अनूप जलोता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

से अवसर मिला भगवान को नदी पार कराने का। केवट विनती कर रहा है कि प्रभु कुछ देर और

रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ।

0: पोटवल की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा रहा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set.

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 27 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश करते से पहले आप सभी को बस स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चलते हैं आज की प्रोग्राम का पहला गाना की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

आवास में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शैलेंद्र सिंह के आवास में गाना पेश किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम।

इंद्र शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रफी साहब की आवाज में गाना पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड आशा भोसले, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक कामकाज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24/7 आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 030-265-65-60। आशा भोसले प्रोग्राम में

The Nightingale of Asia, आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शेर उत्रेख्ट हॉलैंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मुकेश एन शमशाद बेगम प्रोग्राम में मैं भौरा तू है फूल

मुकेश और शमशाद बेगम के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, मैं भौरा तू है फूल। खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए हैं। मोहम्मद रफी एन आशा भोसले, पुरानी नख में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, आशा भोसले की आवाज में। अब की बार ये गाना उस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गए आशा भोसले के बाद चले प्रोग्राम में इस खास पुरानी नखमे की प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रफी साहब की आवाज में बस पीस की गई
1: सामने सारे शिकवे खिले दूर हो।
0: चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा लता मंगेशकर और फिल्म का नाम मैं

इसकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कमल बारूद प्रोग्राम में फिल्म का नाम मन मौजी।

अब इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम मन मौजी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आवारा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गाना बस प्रोग्राम में अगली बार पेश किया जा रहा है द फिल्म, फिल्म का नाम है प्यार किए जा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म प्यार किए जा, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है किसने पुकारा मुझे,

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, फिल्म का नाम प्यार किएगा। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर और आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे

रेडियो SBS के जरिए किशोर एन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हसरों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में

कुमार एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाता रहे मेरा दिल गाना जो पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गई है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में जो आप सभी ने सुना। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, सभी कामकाज के लिए 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं या तो ईमेल कीजिए radio SBS का वेबसाइट की जरिए radio SBS.NL की जरिए।

सुर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है फिल्म यादों की बारा। खूबसूरत नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए मोहम्मद रफी एंड आयशा।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम हमराही।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम हमराही, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम हो

और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा, अलका याग्निक एंड बाबू सुप्रियो की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में, और फिल्म का नाम

सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में। ये गाना जो पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनो वालों, आज रविवार है, इतवार का दिन, 27 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनो वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। खूबसूरत सुहाना मौसम भी है, धूप ही धूप का मौसम। बस आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे कुछ लोकल नखमे की ओर, जो प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, गाना का

उमर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई तुम नाराज हो। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को सुनते

उमर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है, तुम नाराज हो। 12 मिनट ओवर इन स्टूडियो टाइम हो चुका है। चले प्रोग्राम में और भी खूबसूरत लोकल नगमे की ओर।

दो साथी जीवन के विदेश और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, बाहर की ओर देखा जाए मौसम काफी हसीन काफी खूबसूरत सुहाना मौसम है और इस मौसम में हमारे बहुत से सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। मोती बाला मिक्स प्रोग्राम में

रोहित और कबीश की आवाज में मोती माला मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। 4 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 4 मिनट हाफ वे हो चुका है। सुनने वालों मत भूलना कि 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगा और वो भी ग्लेन रामबाली की जरिए। चले प्रोग्राम में उन दिनों का एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और वो भी सुंदर पोपो की आवाज में। सुंदर पोपो की आवाज में ये गाना, उन दिनों का एक गाना है जो आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।

मैशअप रेडियो एसपीएस के जरिए भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611 और इसी तरह का नंबर पर रेडियो एसपीएस का ऐप पर भी ऐप आप कर सकते हैं। रविवार का खास दोपहर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक आखिरी लोकल गीत आज की प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 2:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। एड फिल्म जानवर अलका जी की आवाज में ये गाना।

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक।
1: और रेडियो वेव्स में इसकी जरिए अलका जी की आवाज में ये गाना बस पे इसकी गए। फिल्म का नाम जानवर है, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में शान और साधना सरगम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए प्रोग्राम अभी जरूर आप सुनते ही रहना। मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा, कल सोमवार है, कल सुबह 7 बजे एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए इजाजत और आज्ञा दीजिए, मत भूलना 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी।

किशोर कुमार के आवाज में यो ओपनिंग नंबर अभी आप सुन रहे थे हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आप ही का खिदमतगुजार ग्लेन। बस सुनते रहना हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट रेडियो SBS।

0: अनुराधा पौडवाल के पास में भी आप सुन रहे थे।
1: वंदिनी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो।
0: कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक के पास में

के इस रंग बदलती दुनिया में अशोक अशोक खरे के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से लाइव फ्रॉम द सिटी उत्तराख यानी कि टेम्स ड्राइव नंबर 237 शहर उत्तराख के अंदर से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS अनुराधा पालतोल के वास में के तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है अनुराधा पालतोल

0: साजन।
1: सुनते रहिए ना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फरके से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर राज्य वैसे।

तीन बजकर इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहे यहाँ से ओवर रेडियो SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना।

के तोर भौजी के बहिनिया सचिन सचिन और साथियों के पास में भी आप सुनते हैं।

माला माला भजन के बाद में भी आप सुन रहे थे के मोहे लागी रे। 4:00 इस वक्त 7 मिनट गुजर रहा है, 7 मिनट ओवर 4 लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। के बलमुआ हमारे हमारे गोरे गालों पे तू कर ले प्यार, बोधी माला बोला सिंह के वास में सुनते रहना।

0: गोरे गालों पे तू कर ले प्यार। मोती माला भोला सिंह के वास में भी आप सुनते और अब की बार देनहाग से बेया रमोतार की पसंद सुनते रहना।
1: चली समधिनिया करके सिंगार
0: की समधिनिया कोई तार खोजे चुन चुन के तार

0: Den Haag से बेया बेया रमोतर की पसंद अभी आप सुन रहे थे। राजू सिंह गुलाम के पास में सुनते रहना कि मोर चिरैया तोर चिरैया।
1: बड़े बड़े जोधा गिर पड़े लागत जब नारी के तीर। मोर चिरैया तोर
0: इसला यांकी की पसंद सुनते रहना वो भी देना।

पीकर तेरा प्रेम प्याला। श्रीनाम श्रीनाम फलिंग हॉगस्ट्रैट से राम महेश और साथ में खिसला की पसंद भी आप सुनते हैं हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। वो भी शरीर तरह के अंदर से

अरे काहे मारे नजरिया। वीरेश के वास में भी आप सुन रहे थे रतदम, रतदम से इता महावीर की पसंद भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से।

0: के अभी बाली मोर उमरिया,
1: बाली मोर उमरिया हम ना गोदाया
0: और हम ना गोदाबे गोदनवा। केसरी केसरी प्रसाद के वास में भी आप सुनते हैं। रामदेव रामदेव चैतु के वास में सुनते रहना।
2: वृंदावन में चरला गया करे कसैया बोले,
0: इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज पर केसिफ मासी, और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा।

Maite Gana, Hangama Program over Radio SBS. होलंग के अलावा दुनिया के हर एक कोने में, कोने कोने में लोग हमेशा सुनते हैं इंटरनेट, इंटरनेट रेडियो के जरिए, और साथ में होलंग के अंदर में डीएबी, डीएबी प्लस के जरिए

हनी फ्रोजन के वास में भी आप सुनते के अकेले अकेले तू कहां जा रहे हो। हरी शिव बालक के वास में सुनते रहना।

0: हकीकत होती माला भोला सिंह के वास में भी आप सुन रहे थे इतरेक्ट लाइट्स राइज से राजेश सुदीत का पसंद भी आप सुन रहे थे
1: गजरा लगा के वो गजरा सजा के वो गजरा लगा के गजरा
0: आनंद भजन के वास में

कजरा लगा के जइयो ना। अनंत भजन के वास में भी आप सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं। रविंदर भोला सिंह के वास में बस सुनते रहना कि धन वालों की दुनिया है ये।

की धन वालों की दुनिया है ये। रविंद्र भोला सिंह के वास में भी आप सुनते आज की बैठक गाना प्रोग्राम से स्पेशल स्पेशल रिक्वेस्ट सुनते रहना, और वो भी देनहाग देनहाग से।

के दिल दिल से मिला कर देखो। स्पेशल रिक्वेस्ट भी आप सुन रहे थे, वो भी दनाग से। साथ में आज की बैठक गाना प्रोग्राम का आखिरी नंबर, आखिरी नंबर भी आप सुन रहे थे।

समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। वैसे भी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फिर क्रेज से फमासी और उसके बाद में आज जय आज लिखे जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका हिमुजर ग्लेंड। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

0: Churake Dumera, Guria Cheli. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal, Anmol Malik en Anoop Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghayal komt dan Pyarte Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Ik kom ze pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर सॉन्ग दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ मतलब फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgend liedje via Radio SBS in het programma Geeton Kelleher. Uit de film Tarap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

पिया तू अब तो आ जा, बस आउट द फिल्म कारवा एंड आउट द फिल्म जानम समझा करो कौम, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको रजा जी ले जाना, दिल्ली देश को समुद्र अलका याचनिक।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी, ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा en is gezongen door Sunidhi Chauhan en Alka Yachnik. Gaan we dan verder met uit de film Dil Dhadakne Do, het liedje Galla Guria.

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।